0: हेलो आप पीछे बोलिए
1: आप पीछे बोलिए अब आप पीछे
0: वेरी गुड
2: अरे आज इज
3: वेरी गुड
2: गुड
4: गुड हाउ से यू
0: ए
2: वेरी गुड
0: वेरी गुड